0: हर रस तिन्हि जाता, जम कंकर निर्णय आया, सुख नानक सन्नी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ सोट महला पंजवा।

थोड़ी बड़े होड़ पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने कना जापन करतबा जी अंदर जो साकी जान ला सब की तरह बस तेरा कर पला तेरा करना दुदय तुद कर मान।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सवैये सराबक सुध समूह संधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाहे कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीसन जात बिचारे इति पय तो कहा पय भूपत अंध को नंगे ही पाए पधारे जीत फ्रै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ग जान के सुंदर हिंसद ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर स्नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पवन आहार जति जत तहार सब सब चार हजार के दिख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज स्नह दुर्जान दलेंगे भारी कुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरिन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बटे बरियार विचार है सार की तार पछैया तूरत दे समलिंद मवासन मातिक जान की मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबतन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिरनायक जाचक अनेक सु एक दिवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन की बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद खदान अनेक सो अम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नहात फिरियो लिये सात समुन्द्रन लोक अयो परलोक गवायो वास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरियो सर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पशाह को शीस निवायो को पुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहायो कूर करया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न

0: गुरमुख नाम जपहु मन मेरे
1: नानक बाबो सुख करे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जात हुए सुखिया
0: लाख करोरी बंधन परे
1: हर का नाम जावत निस्तर
0: अनेक माया रंग तिखना बुझावे
1: हर का नाम जावत आगावे
0: जिह मार्ग हो जात अकेला
1: ते हर नाम संग हो से
0: ऐसा नाम मन सदा त्याही है
1: नानक गुरमुख परम गत पाई
0: छूटत नहीं कोट लख बाही
1: नाम जावत है पार पराई
0: अनेक विघ्न जह आए संघार
1: हर का नाम तत्काल उद्धार
0: अनेक जोन जन मैं मर जाम
1: नाम जावत पावे विश्राम
0: हो मैं लामल कब हो न तोवे
1: हर का नाम कोट पाव खोवे
0: ऐसा नाम जपहु मन रंग
1: नानक पाइए साथ।

0: मांगे हो में छोड़े।
1: जी को जन मरण ते डरे
0: साजना की सरनी परे।
1: जिस जन को प्रभु दर्श प्यास
0: नानक ताके बल बल यस।
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: संज्ञा का मिटे अपमान।
1: आपस को जो जाने नीचा
0: कनिये सब ते ऊंचा।
1: जा का मन हो सगल की रीना
0: हर हर नाम तिन काट काट।
1: मन अपने

0: हर व्यवस्था तो जो है प्यार है दूध व्यर्थ पया ऊपर साख सैन यह मेरे गुण गुण कछु ना बूझ जेह प्रसाद तर ऊपर सुख बस है जेह प्रसाद पीव है शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: जेह प्रसाद भोग है सब रसा
1: सगले सामग्री संग साथ
0: जिन्हें हस्त पाव करन नित रसना
1: संग
0: ऐसे दुख।

0: झूठ बकार महालोत्र
1: याहु जुगत बिहाने कई जन्म
0: नानक राख लियो अपन कर कर
1: टूठा गुरुदुम पह अरदास
0: यो पिंड सब तेरी रास
1: तुम मात पिता हम बारक तेरी
0: तुमरी कृपा में सूख करे।

0: साधक संग मुख उजल होत
1: साधक
0: संग मिटे अभिमान साधक संग बुझे प्रभु नीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक महिमा वरने कौन प्राणी
1: नानक साधक की शोभा
0: साधक संग गोचर मिले
1: साधक संग सदा प्रभु
0: साधक संग आवे बस पंचा साध संग होए सब की रेन
1: साधक संग मनोहर
0: साधक संग न कत हूँ तावे
1: साधक
0: संग माया ते पहन
1: साधक नानक प्राप्त सो प्रसाद
0: साध संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापनी
0: साध संग किस्यो नहीं बैर
1: साध के संग न बीका बैर
0: साधक संग न ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंद
0: साधक संग न ही हो ताप
1: साध के संग तजे सब
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साधक संग न कबहू तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस गोचर लहे
1: साधु के संग जाल सहे
0: साधक संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साधक संग दृढ़ सब धर्म
1: साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु के करवा
0: साधक संग सब कुल उधारे
1: संग साजन मिटम निस्तार
0: साधु के संग सूत अन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गावे
0: साधक संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साधक संग नहीं कष काल
1: दासन भेट तो होत निहाल
0: साधक संग कलूख तहरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साधक संग इहा उहा सुहेला
1: साध संग बिसरत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग ना व्यर्थ जावे
0: पार ब्रह्म साध रद वसे
1: नानक उदरे साध सुन रसे
0: साधक संग सुनो हर नाव
1: साध संग हर के गुण गावे
0: साधक संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तर
0: साधक संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु के संग घट घट डीठा
0: साध संग पई आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साधक संग मिटे सब रोग
1: नानक साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा वेदना जान है
1: चेता सुने तेता बख्यान
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही पार
0: साध की शोभा।

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा अक्षर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख दाता।

0: कोट पर दुख ना करे।
1: कई कोट माया श्रम आहे,
0: कई कोट परदेश परमाहे।
1: जित जित लाभ हो तित तित लगना,
0: जाने करते की जाने करता रचना।
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी।
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
0: कई कोट पाथर बिरख निपजाए।
1: कई कोट पवन पानी वे संतर,
0: कई कोट देश भूमंडल।
1: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दाने इंद्र से शतर।
1: सगर समग्री अपने सूद तार,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिन निस्तार।
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद प्रांत सिमर शास्त्र।
1: कई कोट किए रत्न समुद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत।
1: कई कोट किए चिर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे।
1: कई कोट जख किन्नर पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच।
1: सब ते निर सब हूते दूर,
0: नानक आप लिप्त रहा प्रभु।
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट वो जो नहीं फिरे।
1: कई कोट बैठत ही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाए।

0: जियो
1: तस पावे सोई फंदी
0: कबहु ऊच नीच में बसे
1: कबहु सोग हर ग्रंग हसे
0: कबहु निंद चिंद व्यवहार
1: कबहु उपाकाश प्यार
0: कबहु बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आप मिलावनहार
0: कबहु नृत्य करे बह पात
1: कबहु सोए रहे दनात
0: कबहु महाक्रोध विकराल
1: कबहु सर के ओ तरवार
0: कबहु होए बह बड़ राजा
1: कबहु अपकारी नीच का साजा
0: कबहु अपकीर्त में आवे
1: कबहु पला पला कहावे
0: जो प्रभु रखे तिही रहे
1: दुर्पसा नानक सच कहे
0: कबहु होए पंडित करे बखियान
1: कबहु मोहन तारी लावे ध्यान
0: कबहु तट तीर्थ स्नान।

0: दुखी को सब
1: त्याग संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा विकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की
1: दुखना
0: सुख त्रेटरे
1: संत के दुखी को नाहीं ठाहु
0: ज्ञान संत पावे ता लय मलाए
1: संत का दुखी अत बीच ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को ध्यान परमाहिए
0: संत का दुखी उजड़ पाई
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सांस बिना मृत किलो
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीज आपे ही गाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन
0: ज्ञान संत पावे ता लय अवार
1: संत का दुखी यह बिललाई
0: जो जल बिहोन मछली तरफड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावन ईदन नहीं तरापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो वार तिल खेत माए देला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सद में त्याग
1: कीर्त निंदक का तो रही पाया
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
0: संत के दुखी को दर के मिले
1: सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई
0: है संत का दुखी ना मरे ना जवाई
1: संत के दुखी की पूजा न आस
0: संत का दुखी चले नरासा
1: संत का दुख न दृष्ट है कोई
0: जैसा पावे तैसा कोई
1: भया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोई
1: सब कट तुसके हो करना हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।

जिसको हर प्रभु मन चित आवे, जिस पर अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, सूदत सूदत सूदत सीजिया, जब देखो तब सब किस मूल, नह किस जन्मे नह किस मरे, आवन जावन दृष्ट अन्दृष्ट, आपे आप सकल में आ

0: संसार उतरे तन मन
1: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण
0: प्रभु के सेवक दुख विसार
1: आपे मिल लए कृपाल
0: मुर्गा सब जा भए निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड़ भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानी ते फिर को उत्तम कर्मा
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहज सुभाए होवे सो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा साते सा दिसना
1: जिस ते उपजे तस माहि।

0: जप जन सदा सदा दिन रहनी
1: साचे उच निर्मल
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल दिया
0: जाके मन गुरु की प्रतीत
1: ते जन आवे हर प्रभु जी
0: भगत भगत सुनिए।

0: रखे
1: राखी आत्मत कोई न लाखे
0: प्रभु के सेवक को कू न पहुँचे
1: प्रभु के सेवक उते उचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दे देश प्रगटाया
0: नीति कीरी महकल रखे
1: बासम करे लस्कर कोड लाखे
0: जिसका शासन काट।

0: सुत मीत कुटुंब अर बनता राज रंग माया विस्तार अस हस्ती रथ सवारी जिन दियत सबजना बिगाना गुर की मत तू ले आने हर की भगत करो मन मीत चरण कमल राखो मन माहे
1: जन्म जन्म के केल
0: आप जपो अबरा नाम जपाव हो सार भूत सत हर को नाओ
1: गुन
0: गावत तेरी उतरस मैल
1: जाए
0: ओहे चिंत बसे सुख नाल
1: सास करा सब नाम समार
0: चार स्यान सग

0: प्रभु की दृष्ट महा सुख हुए
1: हरस पावे बिरला कोई
0: जिनका ख्यासे जन तृप्ता ने
1: पुरख नहीं डोला ने
0: सबर परे प्रेम रस रंग
1: चाहो साथ के साथ
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश अंदर निवला
0: बड़ भागी जपिया प्रभु सोई
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पही
1: सतगुरु ते निर्मल मत नहीं
0: जन को प्रभु होयो दयालु
1: सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया
1: जन्म मरण दुख प्रम गया
0: इस पुनि सरदास पूरी
1: राम रे आशा संग
0: जिसका साधन लिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सुख बिसरज काल न पान
1: सुख बिसरज किया जाने
0: सुख बिसरज न सब कुछ दिया
1: सुख बिसरज जीवन जिया
0: सुख बिसरज अगन मह रखे
1: गुरबसाल को बिल्ला लाखे
0: सुख बिसरज बिखते काट
1: जन्म जन का टूटा गाने
0: गुरपुर तो तेह बुझाया
1: रब अपना नानक जान दे आया
0: साधन संत करो एहु काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो
1: आप जपो अवरे नाम जपा
0: भगत भाई तरिय संसार
1: मेरे भक्ति धन हो शीशा।

0: सा नाम जप ले
1: ताकि उपमा कही ना जाए।
0: नानक रहा सर्व समाए
1: प्रभु संत दीन दयाल
0: भक्त बचन सदा कृपा
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व कटा कात प्रात पाल
1: आदि पुरुष कारण करतार
0: भक्त जन के प्राण दार
1: जो जो जपे सो होए पुनीत
0: भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान
0: नानक तुमने सर्व पुरख भगवान
1: सर्व कंठ मुक्त मोख पाए
0: एक निम खार के गुण गाए
1: अनेक राज भोग बढ़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाए।

0: मत प्रभु केवल तनी
1: बंद मुझ को किसको गनी
0: जब एक है हरा गम अपार
1: तब नरक सुर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई
1: तब सिर्फ सावत कहो कित ढाई
0: जब आप है आप अपनी जोत तर
1: तब कवन निडारम कवन कत डर
0: आपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर गम अपार
0: अपना शीशक अपन आसन
1: जन्म मरण को कहा बना
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोई
1: तब जम की त्रास कहो के सोई
0: जब अवगत गोचर प्रभु एक
1: तब चित्र गोत के

0: कौन को मान कौन अपमान।
1: जय स्वरूप के बल जगदीश,
0: जय छा छिन लागत को की।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसे पूकम तृप्ता।
1: कर्ण करावन करण हार,
0: नाने करते का नाहे समान।
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
0: कब कवन भाई बाप मित्र सुत पाई।
1: जय सर्व कला आप है परवीन,
0: वेग देव का कोची।
1: जब अपन आप उतार।

0: पूरन पूर रहे दयाल अपने कर्तव्य जाने आप प्रतपाल जीवन बह पात
1: जो जो रचे
0: भावत सलय मिलाए मन अंतर विश्वास कर मान्या।

0: ससिया सुन खतर में
1: बाणी क्रम की सबको बोल
0: आप डोला कबू डोले
1: सर्व कला कर खेले खेल
0: मोला पाइये गुणे अमोल
1: सर्व जोत में जा की जोत
0: तारे ओ स्वामी ओत बोल।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलप है अठ नंदन प्रथम राग भैरव वह कर ही पंच राग नी संग उचर ही।

जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वड्या भागां वाले हो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जिया दे पावन शहीदी दिहाड़े नू मुख रखदिया होया 11 रोजा श्री सुखमनी साहिब जी दे जापा विच आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भरिया हन। आप समूह संगतां दा तह दिल तो धन्नवाद। अगले श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप हुण सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जीयां दे पहले प्रकाश दिहाड़े दे संबंध विच होणगे। तरीकां आप जी नूं कुछ दिन पहलां इश्तिहारां राहीं पता लग ही जाणगियां। सो आओ हुण आसा की वार दा कीर्तन सरवण करिए। आप संगतां दे चरणां विच जरूरी बेनती है 6 जुलाई तो 16 अगस्त तक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जिया की संपूर्ण संथ्या पाठ बोध समागम उलीके गए हैं। आप समूह संगतां दे चरणां विच बेनती है बार इश्तिहार लगे हुए ने उन्हां तो QR कोड नूं स्कैन करके रजिस्टर करो। इन्हां पाठ बोध समागमां विच वध तो वध हाजरियां भर के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी का शुद्ध उचारण सीख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी नूं होर सुंदरता दे नाल पढ़ के सच्चे पातशाह जी दे दरों करों खुशियां प्राप्त करिए। सो हुण आसा की वार दा कीर्तन होवेगा। उपरंत ठीक 9 बजे सच्चे पातशाह जी दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए जाणगे। अज शाम 6:40 तो 8:40 तक महान कीर्तन दरबार भी हो रहा है। शामां दे दीवाना विच भी आप संगतां ने कीर्तन दरबार समय वध चढ़ के पहुंच के हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने। आओ आसा की वार दा कीर्तन सरवण करिए। अति सत्कार योग सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीए भाई साहिब भाई करमजीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुण कर बख्शे अवगुण आरे सतगुर पूरा वैद है पंजे रोग असाध निवारे सुख सागर गुर दियो है सुख दे मेल ले दुखियारे गुर पूरा निर्वैर है निंदक दुखी बेमुख तारे गुर पूरा निर्भौ सदा जन्म मरण जम डरै उतारे

जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो काल कोर समुंदर में बूढ़त थे।

दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वै गावै, पंचो संग बरंगन लावै। बैरारी कर नाटी तरी, गवरी गावै आसावरी। तेह पाछे सिंध भी अलापी, श्री राग स्यो पंचो थापी। सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर, अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खष्टम मेघ राग वै गावै, पंचो संग बरंगन लावै।

तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जुगो जुग अटल चबर शतर तखत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ प्यार अदब सहत गुरफते परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भागा नाल संगत दियां घड़ियां नसीब होईयां जिथे तन करके बैठे हाँ किते साड़ी मन करके भी हाजरी लग जाए कन्ना नाल सुने हुए बोल किते साड़े मन तक पहुँच जान। बड़े ही प्यार नाल जिथे रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता गुरमत विचारां दी सांझ सत्कारयोग ज्ञानी हरविंदर सिंह जी आप संगतां नाल पा रहे सी जिहड़े सुरती करके हाजिर सी उन्हां ने आनंद माणिया है। आओ इतिहासक विचारां दी आरंभता तो पहलां मन दी एकाग्रता लई एक वार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो

आए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के वड चीरा रहाओ

जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो ताओ पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हाओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया।

त्याऊं, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पछा, श्री

आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंभ।

जिस का सब आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिस का होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो।